आओ सेने जमंगे रक्स करे, आओ सेने जमंगे रक्स करे, साज लेकर का डरे की है, देख कर उनकी अखलियों को।